है हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी कृपा साहिब दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमर श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई आए। जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया करना उन दे आवे। ताहे सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी धार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। ऐस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया दे पावन सरूप दे सुख आसन दी सेवा हुई है। सोहिला साहब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक दी खिमा बख्शना आप जिया दे भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया ही रहना आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागणे दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल

अरे तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार। तुम धन धनी उदार त्यागी सरावन सरवणन सुनियत सुजस तुम्हार। मांगू काहे रंक सब देखाऊं तुझ ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा

झूठ संग मचाए। जो छड़ना सो अस्त्र कर माने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हराए। चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत, पसम संग होए। अंध गुप में पतत बिकरार, नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोग बेचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मरमाया, छप स

जो खेती जाए गोविंद भजन मिन ब्रेथे सब काम ज्यो किरपन के डरार दाम तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाहू नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत।

प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तुस ठाकुर को रकमन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तुसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंद

सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी। साधक संग मुखू जल होत साध संग माल सगली खोत। साधक संग मिटाय अभिमान साधक संग प्रगटाय सुज्ञान। साधक संग बुझाय प्रभ नेरा साध संग सबोत नबेरा। साधक संग पाए राम रतन साधक संग एक बर जतन। साध की महिमा वर्णे कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी। साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पुर फुलाय। साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा। साध संग है सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कतूं तावे साध संग अस्तित मन पावे। साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन सा बीत साधु कै संग महापनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर साधक संग ना भींगा पैर।

ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइये, ब्रह्मज्ञानी को बलबल जाइये, ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सुरनान, ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर।

पुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गाते ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।

जिसको हर पर अपमान चित आवे सो संसो हिला नहीं डुलावे। जिस पर अपना कृपा करे सो सेवा को किसते डरा जैसा सात ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजा गुरप्रसाद तत्सपूजा जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई असूल। नह के जन्मे नह किश मरे आपन चलते आप ही कर आवन ज्यावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रज थाप उथाप। अभिनाशी नाय किश खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप। जिन प्रभु जाता सो शोभा बंत सगल संसार दुरै तन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदान प्रभु के सेवक दुख विसार नापे मेल लय कृपार गुरगा शब्द पै निहाल। उनकी सेवा सोई लागे सुनू कृपा करे बट भागे नाम जबत पामे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वै सो होए करने हार पछाणे सो प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसे बजे तस्माहे समाए ओए सुख निधान उन्हू बने आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक हो जान। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिसमन माहे तुस्ते बिरथा कोई ना हेरे मर मेरे सदा हर जाप। विनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जैसो प्राणी लोचा कोय तस्में ना ही तेरा किश काम गत नानक जब एक हर नाम। रूबंतो नाहि मोहाय प्रभु की जोत सगल घट सुहाय तलवंता क्या को गर्भ जा सब किश तिसका दिया दरबाय अत सूरज कऊ का।

ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सासा समारे अपने जन का प्रदा टके अपने सेवक की सर्वर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद राखे ताकि गदमित खोए ना राखे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैद से प्रगटाया निकी गिरी मैं कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काट दे आपदा को राख दे कर हाथ मानस जतन करत बात तस्के करता बिरथे जात मारे ना राखे अब ना कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु राख विडाणी बारंग बार बार प्रभु जपिए पिए अमृत मंत्र पिए नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस्क शबर नाही दृष्टाया नाम धन नम रूपरंग नाम सुकर नाम गा संग नाम रह जो जंत्र बताने मंत्र नामे नाम समाने ऊठ बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जाचे बादन रात प्रपने जन किन्नी दाद करे भगत आत्म

फल पावे साधना चाल तेरे तना तू क्या लटावे मूर्ख मना सुत मीत गुटम अर बनता अंत कह हाओ तुम कमन सनाता राज रंग माया विस्तार अंत कह हाओ कमन छुटकार आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंभ झूठ पा सारी जिंदी तुझ बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुरु की मत उले याने भक्त बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीन निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप अबरा नाम जपावो संत कहत रहत गद पावो सार पुज सतर को राम सह सभाहे नान गुन गाओ गुन गाव त्री उतर समैर बिन जाय होमे बिख फैर होहे अचिंद बसे सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल शाड सियानम सगली मना सा संग पावे सच धना अर पुंजी संत करो व्यवहार इहां सुख दरगह जायकार सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सारा एक सिमर एको मन आहे एक गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत।

और अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारा पेका विस्तार जात भगत सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाय तुम ते भिन्न किश होया अपन सो सब जगत परोए जागो प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल सृष्ट का जिता जी जंत्र सब ताके हा दीन दयाल अनाथ को नाथ सराके तस कोए ना मारे सो मुआज मनो बिसार है तस्तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानू सात गुण निधान बेअंत बार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपरोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो ब्याप प्रतपाले जी अनुभव जो जो रचो सोत से त्याद जिस भावित लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाय मन अंदर विश्वास कर मान्या करन हार नानक जान्या जन लागा हर एक ना जिसकी आस न मृत्यु जाए सेवा को सेवा बन आई हुकम बूझ परम बद भाई से प्रण ही विचार जाके मन वस्या दृंकार बंधन तोर भय निर्भय रंदन पूजे गुरु के पैरे लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम दत्त करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन के गुण गाओ ब्रांतरन का यह स्वाट पैर प्रभे खोरेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन छे नानक फल पावो हालत पल दुले सवार राम नाम मंत्र उतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसाए तो साज परीखिया मंत्र नाम जब भोले बुलाए दुख दर्द मंते भाव जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभ खेप तुम्हारी का टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे तिसे दूर गांव को जाय बने राखन हार ते निर्भाव जपे सकल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए

अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गो वेद मन अंतर की उतरे चिंद पास अनित त्यागो तरंग समझना की धूर मन मांगा आप छोड़ बेनती कर हो सा संग अग्न सागर तरु हर तन के पर लेहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चेत चितवो नारायण एक एक रूप जागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह उधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कबावत होत उदार आप तलय रोके निस्तार सफल जीवन सफल तागा संग जाके मन लागा हरंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे प्रगटे गुपाल मांद के माथे नान कुदरे तन के साथे संजोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्णोई सेव की सेवा जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम संरसना कहते कर प्रसाद या प्रभु धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बस सोत निदान सर्विच्छा दागी पूर्ण प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब देवज पाया स्थान बहर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वदय सिद्ध विद्या चव तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सबके मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन गय मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने यह निधान जपै मन कोय सब जुग मैं तागीगत होय गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सकल मथान केवल हर नाम गोविंद भगत गय मन विश्राम कोट पराध सा संग मिटै संत कृपाते जमते छुटै जाके मस्तक कर्म प्रपाए सा सर नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तजन आवे हर प्रभ जीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलाभ दे तत्काल उदारे

अमोल पंडहर अमोल आवह अमोल लय जाहे अमोल पाए अमोला समाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल परवान अमोल

देवी सोहन सदा सुवारे। गावे इंद इदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले।

सर्वकाय सर्वकृतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वसातर ना जान ही जेह रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाग कह नेत भागत नेत कोट सिमरत प्राण सातर नायाव ही बहुचेत

सह के सर्वत्र पे सह के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी।

ंगी त्रिकामे त्रिभग्न त्रिपादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सु सर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है छेज है अछूत है के नरकंग प्रनास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है परजुगते अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगते अनूप है चाचरी छंद

0: जैसे तीखा सुम सुमाए पौड़ी
1: ताकि बराबर आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इकना गले जजीरी के थोड़ी चढ़ी पे सियाज आप कराए करे आप कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर कैसी करनी सार।

0: जय खुदा।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब सिंह जी आप जी नूं गुरदा सफरी मौन तो अमृत विद्वान विच श्री आसा की वार दे शब्द की तरह जुड़ रहे सन। भाई सतनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले का कीर्तनी जत्था, भाई साहब जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सतगुरां जी वालों अमृत वेले बख्शिश होए पित्र हुक्मनामे की पित्र मुखवाद की कथा सरण करवाउणगे भाई लखविंदर सिंह जी खालसा जी। उन्होंने पासों प्यार सिखा सरण करो जी। सतसंग जी आने वाले 9 अक्तूबर तो लैके 14 अक्तूबर तक शाम के दीवान में भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी, ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले कथा कराया करनगे। ऐतवार दीवान में भी जो कि 14 अक्तूबर में है दोपहर दीवान हाजिर भरनगे। आज उन्हें सारे दीवान हाजिर भर के लाहे प्राप्त करने हम कथा रहे जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु

गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछु ना बिचारे। नाम रतन सुन

सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभ गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभ गुरप्रसाद जप आदि सच जिगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभ गुरप्रसाद जप आदि सच जिगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभम गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाड़ सच है पी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभम गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर।

0: चौथ महल्ला पंजम हम मैले
1: तुम उजल करते
0: हम निर्गुण तुम दाता हम मैले तुम उजल कर हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चतुर तू सर्व कला का ज्ञान हम मूर्ख तुम
1: चतुर
0: तू सर्व कला का ज्ञान माधो हम
1: ऐसे तुम ऐसा माधो हम ऐसे तुम ऐसा
0: तुम पाप हम पापी
1: तुम पाप खंडन
0: नीको
1: ठाकुर देसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा तुम सब साजे साज निवाचे जियो पिंड दे प्राण तुम सब साजे

0: देहो मेहरबान, तुम करो पला हम पलो न जान, तुम सदा सदा दयाला, तुम करो पला हम पलो न जान, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिदाते, तुम राखो अपने बाला, तुम सुखदाई पुरख बिदाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाच, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाच, कहो नानक हमें है हवाला, राख संतन कह पाछ, कहो नानक हम है हवाला, राख संतन कह पाछ।
1: गौड़ी महल्ला पंचम।

0: प्रभ से लाग रहे हो मेरा चीत, आदि अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत, मन विलास पै साहिब के अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूरन बैज रखाई,
1: हर सिमर
0: सिमर आनंद कर नानक प्रपूरन बैज रखाई।

0: दर्क देन जो मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े राज मिलक खुशियां कणी जाय मुख न मोड़ राज मिलक खुशियां कणी जाय मुख न मोड़ टाडी दर प्रमंगणा दर कदे न छोड़ टाडी दर प्रमंगणा दर कदे न छोड़
1: नानक
0: मंतन चाओ एहो नित प्रभु को लो नानक मंतन चाओ एहो नित प्रभु को लो
1: सतगुर आयो
0: शरण तुहारे
1: मिले सुख नाम
0: हर सो चिंता लाए हमारे सतगुर आयो शरण तुहारे मिले सुख
1: हर सुबह
0: चिंता लाए हमारी
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक
0: देव साहिब
1: तू ही निरंकार
0: तू ही निरंकार
1: तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर
0: तू ठाकुर उच्च भगवान
1: नानक की प्रभु अपनी भक्ति लाल धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक
0: देव साहिब
1: तू ही निरंकार तू सदा सलामत तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्रभु अपनी भक्ति मांगो दान
0: ठाकुर नाम
1: धन धन गुरु नाम धन गुरु नाम
0: धन गुरु नानक
1: धन धन गुरु गोबिंद सिंह धन धन गुरु गोबिंद सिंह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन बाबा नाम सिंह जी धन धन बाबा नाम सिंह कोट कोट पढ़ना फुल जप मां तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़ती तेरे भाने स्वाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ी कला
2: सतनाम श्री वाहेगुरु जी तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हम मार्ग तुमरे तारे तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखण हार दयाला राखो राखण हार दयाला सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले सजन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास बैठिया सोही है

सम्मान योग गुरु सवारी सत संगी जनो सतगुरु गुरु रामदास जी दे पावन पवित्र दरबार दे कीर्तनी भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी ने सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी प्रसन्नता लैन लई इस सीडी विच सतगुरु गुरु रामदास जी दी सिफत विच अमृत बचना दा कीर्तन हाजूर दी प्रसन्नता लैन लई कीता। सारे शब्द तकरीबन सतगुरु दी सिफत सलाह ते गुरु जी दी वडियाई दे विच ही गुरु ग्रंथ साहिब विचों जो लै गए ए हजूर दी वडियाई विच उचारण कीते ते इन्हां दा शब्दां दा प्रकरण यही है

दूसरी निंदा, संसार दी गुस्तत, लालची, खिरसी, तमा वाला बंदा करता है। ते जो हिरस, लालच, तमा रख के, स्वार्थ रख के किसी दी झूठी गुस्तत करेगा, ते कुदरती है ओ ईरखा वश होया, द्वेष वश आया, अंदर दे खंकार दी सट वजन दे कारण किसी दी निंदा भी जरूर करेगा। संसार दी उस्तत दा दूसरा पहलू है कि निंदा। पर जदो कोई सम्राट सतगुरु दी परमात्मा दी उस्तत करदा, इस विचो एक ता संसार दी निंदा, संसार दी द्वेष मिट दी है, ते दूसरा जिस दे गुण गाए जा रहे ने, जिस दी उस्तत कीती जा रही है, कुदरती तौर ते उस दे गुण, उस दी सिफत, उस दी वड्याई करन नाल, उस वड्डे दे गुण शिफ्ट करन वाले दे अंदर प्रवेश कर जांदे। जिन्नी कोई परमात्मा दे गुण गाउंदा है, उन्ने परमात्मा दे स्वभाविक गुण, कीर्तन, गुण गायन करन वाला, शिफ्ट करन वाला उहदे अंदर प्रवेश कर जांदे। जो भाई साहब ने शब्द गायन कीते ने, उन्हां विच समर्थ गुरु नूं धन कहण दी, उच्चा कहण दी, वड्डिया कहण दी, उस नूं सब तो उच्चा सत्कारन लई हजूर ने प्रेरणा कीती। इस कारण इस अमृत बचना दी लड़ी विच ए बचन वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुरसोई, इहदा मतलब गुरु नूं धन कहो। इसे विच ही बचन सब धन कहो गुर सतगुरु, गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कजिया। इसे ही अमृत बोलां विचों एक मैं बचन आप जी दे नाल जरूर संखेप जी व्याख्या लई कहांगा, जिथे बाबा सत्ता साहिब जी दे ये बचन धन धन रामदास गुर जिन शिरिया तिने सवारिया। भट्टां दे बचन कि गुरु रामदास जी नूं धन कहिए ते मिलदा की है, उस विचों है जेकर एक इंसान सतगुरु समर्थ नूं चेते करे, ते पट साहिबान जी दा ये जिंदगी दा तजर्बा है कि गुरु रामदास जी नूं कोई धन कहेगा ते उस दे अज्ञानता दे हनेरे नूं धन शब्द ही कट देवेगा। जे समर्थ गुरु दा कोई सिमरन करेगा ते उस दे अंदर दी गुरु रामदास जी तपश मिटा देंगे। जे कोई गुरु रामदास जी दी सिफत करेगा, वड्याई करेगा, जितना वो नाम जपेगा उस तो कई गुणा होर बख्शिश होवेगी। जे कोई सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं धन कहेगा, उस दे घर अंदर दरिद्रता, कंगालता, जो भी संसार दे दुख कलेश ने वो निकल जाणगे। घर विच संसार दा हर सुख गुरु रामदास जी दा शब्द कहण नाल मिलेगी। इथों तक केवल वड्याई ही नहीं, केवल अज्ञानता दा हनेरा ही नहीं, सतगुरु गुरु रामदास जी नूं सारी संगत मिलके जे धन कहे ते पट साहिबान कहिंदे ने गुरु रामदास जी नूं धन कहण नाल परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है। उहनां दे अमोलक बचना विचों जो गायन कीता गया है असीं पढ़ने आ, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिद पावै, ओ केड़ा सतगुरु, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो, सारी संगत मिलके गुरु रामदास जी नूं धन धन कहो, जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नर। जदो संगत ने, जिग्यासुआ ने, भावना वालिया ने गुरु नूं पार ब्रह्म कह के नमस्कारिया, उहनां दी सिफत कीती, इस सिफत विचों होर की दात मिली। इस दे मुतलक बाबा सत्ता जी ने अपने रसना तो गुरु रामदास जी दी सिफत विच

उच्चारण कीती हुई पौड़ी विच बड़े बख्शिश भरे बचन कहे धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया पूरी खोई करामात आप सिरजन खार है तारिया। देखो अगे किड्डा वड्डा सिखा ने संगता ने गुरु रामदास जी नूं अपने सीने विच थां दिता ओ थां सी सिखी अतै संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। ते जिसने भी गुरु रामदास जी नूं धन किया जिनी तू सेव्या भाओ कर से तुद मां पार उतारिया। जिसने भी तुहानूं भावना नाल श्रद्धा नाल जिनी तू सेव्या भाओ कर से तुद पार उतारिया। लभ लोभ काम क्रोध मोह मार कढे तुद सा परवाहिया। जो धन कहेगा उन्हां नूं सारे औगण सारिया बुरियाईया अंदर दी मैल गुरु रामदास जी दा नाम लिया चली जाएगी ते अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर जी दे नाम दा निवास होवेगा। एक कारण के इन्हां शब्दां दी लड़ी विच जो गायन कीते गए ने एक पौड़ी गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बोल आसा की वार विचों लई गई है। उस पौड़ी विच गुरु नानक साहिब जी ने यह स्पष्ट कर दिता कि जदो कोई किसे दी वडियाई करेगा संसारिक तौर ते किसे इंसान दी वडियाई करो ते अंदर निराशता अंदर फिक्कापन अंदर बेरसा प्रतीत हुंदा है ते जिहड़ा सत गुरु नूं वड्डा करके सलाउंदा है गुरु दियां वडियाईयां उस सिख दे तुर अंतर आत्मे आपणे आप निवास कर जांदियां। महाराज जी दी इस पवित्र पौड़ी विच हजूर ने फरमाया कि सतगुरु वड्डा कर सहलाई है गुरु नूं वड्डिया करके सिफत कर। महाराज कहण लगे जिस विच वड्डियां वड्याईयां जिस समर्थ गुरु विच हर एक वड्डी वड्याई है सह मेले ता नजरी आईयां जे परमात्मा दया करके समर्थ गुरु मिला देवे ए वड्याईयां ता ही नजर पैंदियां सह मेले ता नजरी आईयां जां तिस भाणा ता मन वसाईयां। जेडियां गुरु जी दियां वड्डियां वड्याईयां ने जदो परमात्मा नूं कोई जिज्ञासु पा जाए गुरु दियां वड्याईयां उस सिख दे तुर अंदर प्रवेश कर जांदियां। सह मेले ता नदरी आईयां जां तिस भाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां।